फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक

0: खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है। इसलिए जिसे भी ईश्वर में जरा भी विश्वास हो, उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

प्रभु भी रचते हैं लीलाएं, स्वयं ही हरते हैं जीव के मन से माया मोह के बंधन और करते हैं बंधन मुक्त भी, किंतु उनकी माया का रस अनोखा है।

जरा सोचिए तो कौन होगा उस प्रभु से शक्तिशाली जिनके इशारे पर नाचती है ये दुनिया सारी, उस पर भूलापन ऐसा कि प्रसन्नता से दुनियावारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुनेंगे। आज सुनेंगे 224वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित S.L. कंडारा। दूसरी कड़ी आज सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 से। 7:00 से भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:00 से सुनिए

समाचार प्रभात 8:15 से कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, लेखन मिलिंद सबनिश का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 8:30 से चित्रलोक और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुन सकते हैं पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश का पुनः प्रसारण। ग्यारह बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार और 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे का समय है सुरीला सफर कार्यक्रम का और 2 बजे से पुनः प्रसारण होगा वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम का। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से आनंद लीजिए सदाबहार नकमे कार्यक्रम का। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनेंगे 3 बजे से। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, इस श्रृंखला में आज सुनिए कहानी ज्वालामुखी। कहानी का लेखन और वाचन किया है निवेदिता श्रीवास्तव निवी ने, संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। शाम 5 बजे से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने और शाम 6:30 से झरोखा के अंतर्गत सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम का विवरण। शाम 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा और इस कड़ी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। शाम 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पुरातत्व के तत्व ये झलके सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन नाजनीन का, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात। 11 बजे से कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

आपको एक बार फिर से बता दें, वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 33वीं कड़ी आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 बजे से। और ये कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं झरोखा के अंतर्गत, जिसमें आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम श्री रामचरितमानस की 224वीं कड़ी सुनिए।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थीं, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए

जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा साहब का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वायलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे, इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया।
2: देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में
1: जी
2: दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित विजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के
1: जी जी,
2: उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे पे अच्छा काम किया। दाता जी,
1: डीके दाता, हाँ,
2: ये सब लोग बजाते रहे। लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियाँ आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, अपना पंडित रामनारायण जी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ, और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज़्यादा रहा कि
1: बहुत बड़ा योगदान है,
2: योगदान रहा
1: जी जी।
2: और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनके बहुत कम लोग वाकिफ हैं इससे, कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि
1: जी,
2: अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी, उनके इंस्ट्रूमेंट में थी, वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अभी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है, तो लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पर।
1: पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, तो पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया, किसी ने कोशिश की कि इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे, इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से?
2: जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है
1: जी
2: कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इस पे
1: जी।
2: अपने आप में ये कम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, परिपूर्ण वाद्य है ये, और जिस जिसने भी इसके साथ छेड़छाड़ की है
1: जी,
2: वो बुरी तरह से असफल हुए हैं। कुछ लोगों ने इसमें तरब लगा दी और तरब लगा के बजाना शुरू किया, तो वो ना तो वायलिन रहा ना सारंगी बन पाया। सारंगी का जो टोन है वो अलग टोन है, वायलिन का टोन अलग है, वो तो कोई तीसरी बात हो गई, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो फेल्यूर जो इन लोगों के हैं वो अपनी जगह पे ख़त्म हो गए। वह बाजा आज भी चार तार के सिवा नहीं बजता है।
1: जब वाद्य ही परिपूर्ण है तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश?
2: एग्जैक्टली
1: जी जी।
2: और जोग साहब ने चार तार पांच तार के साथ ही बजाया इसको, एक तार उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, पर बजाया उन्होंने चार ही तार से ज्यादा।
1: आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे
2: जी, तो जोग साहब का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये, जितना साउथ इंडिया में है
1: जी।
2: हर फंक्शन में, हर म्यूजिकल इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है।

0: एक्चुअली वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं, राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और
1: लालगुड़ी
0: लालगुड़ी जयरामन,
1: जी,
0: इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं
1: समकालीन कलाकारों में, एल
0: सुब्रमण्यम जी हैं, हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल
1: जी,
0: हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से।
2: पंडित वी जी जोग साहब की आप बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल जरूर सुनवाई।

पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन का।

0: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वह समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा

0: कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सिकल सेल एनीमिया के विशेष कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश प्रवास के दूसरे दिन आज जन स्वास्थ्य और जनजातीय कल्याण को समर्पित रहेगा। राष्ट्रपति खंडवा जिले की पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आज अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम

0: में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। पेश है संवाददाता हीरालाल लोंगरे की एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज ओमकारेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम का आयोजन सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से किया जा रहा है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अपने संबोधन में सिकल सेल रोग की रोकथाम, समय पर जाँच, उपचार और जन जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालेगी। साथ ही जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य संरक्षण और उनके समग्र विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का संदेश देंगी।
0: इससे पहले कल राष्ट्रपति ने बैतूल में आदिवासी समाज का सशक्तिकरण विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पूजा अर्चना भी की, जबकि यात्रा के अगले चरण में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गाँव का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। वे 22 जून को कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में भी सफलता प्राप्त की है। पिछले 12 सालों में भारत में हुए विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा,
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: कोलकाता का मशहूर रेड रोड 21 जून को 12वें राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष की थीम स्वास्थ्य वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। उत्सव के उपलक्ष्य में कल 12 विशेष डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता में भव्य ड्रोन शो के साथ हुगली नदी पर 500 नावों में सामूहिक योग का अनूठा प्रदर्शन होगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह आयोजन भारत के शाश्वत ज्ञान का वैश्विक आंदोलन है। इस वर्ष दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में भी तैयारियां जोरों पर हैं। नीमच के लायन डेन में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां सुबह 6:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। शिवपुरी जिले के पोलो ग्राउंड और डिंडोरी जिले के शिक्षण संस्थानों में व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योगाभ्यास की तैयारियां पूरी कर ली गई है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। इस किस्त के साथ फरवरी 2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना के तहत कुल वितरित धनराशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पीएम किसान उत्सव दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री आवास में कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों और अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय की भविष्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमें नवाचार अनुसंधान

अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर प्रदेश को ज्ञान और प्रौद्योगिकी का सशक्त केंद्र बनाना होगा। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास और आवास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संजय दुबे, प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एम सेल्वेंद्रम और मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ अनिल कोठारी भी उपस्थित रहे। बात खेल की। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल किया। उरुग्वे की चियारा एपेमनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किए। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव के बीच लोग मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के जिले में कल बारिश के बाद आज मौसम विभाग ने राजगढ़ और अशोकनगर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कल पुरानी कृषि मंडी में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में आगामी पीढ़ियों के स्वास्थ्य हेतु प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील की। गुना जिला कलेक्ट्रेट में गुलाब की उन्नत खेती और पॉली हाउस प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर चालू वित्तीय वर्ष में 100 एकड़ नवीन पॉली हाउस का लक्ष्य रखा गया। भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए जिले के 32 केंद्रों पर सुरक्षा और सुविधाओं की कल समीक्षा की। ग्वालियर जिले में 27वें वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेले में शहीद सुखदेव के वंशज अनुज थापर और शहीद अनूप कुमार के माता पिता को उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने सम्मानित किया। डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल बैठक लेकर भारत पशुधन पोर्टल पर पशुपालकों के आधार अपडेट और टीकाकरण प्रविष्टियां 20 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। भोपाल नगर निगम द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु 84 जल नमूनों की जांच की गई और पाइपलाइनों के 35 लीकेज सुधारे गए। पन्ना जिला पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में छत्तीसगढ़ से परमेश्वर कंवर को गिरफ्तार कर पीड़ित के बैंक खाते से ठगी के 2,47,000 रुपए फ्रीज किए। नीमच जिले में शासन आपके द्वार अभियान के तहत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा सहित सभी जिला अधिकारी टीम भावना का संदेश देते हुए बस से ग्राम कंजारडा चौपाल पहुंचे। और जबलपुर जिले के बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच अंतिम चरण में है। जस्टिस संजय द्विवेदी आयोग के समक्ष शिकायतकर्ताओं ने स्वतंत्र तकनीकी जांच न होने पर सवाल उठाए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सिकल सेल एनीमिया के विशेष कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: हो रहा है?
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अफसाना फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोल, हुसनलाल भगतराम का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आंसू फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। कमर जलाल आबादी के बोल पंडित हुसनलाल भगत राम का संगीत। इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वरों में आप सुन रहे थे दाग फिल्म से गीत। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor? ये तीन चीज़ अगर हम कर पाएं ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें जुगनू फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें छलिया फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।

0: जंजीर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

राजा रानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं जीत फिल्म का ये गीत। सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में जीत फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसके साथ ही आज का हमहराही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी, वी आर एवियन पेरिस, मैं इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
4: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरामपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरामपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरामपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरामपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरामपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के

0: थोरा जे जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
4: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak bharosa kiya ja sake. Aur aise samay mein Bharat vishwa mein ek trusted partner ke roop mein ubhar raha hai.
3: Mr. Modi further said the country is investing across sectors.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ।

डोमिनिक सेजो, जॉय मेंडोला, माफ कीजिएगा लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेजो की आवाजों में आप सुन रहे थे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से ये गीत, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। भाई वाकई हम पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं कि भाई ये मौका अगर मुझे मिल जाए तो बहुत ही खुशी होगी, या ये व्यक्ति अगर आ जाए, या ये चीज मुझे मिल जाए। और जब वो चीजें, वो मौके और वे व्यक्ति हमें मिल भी जाते हैं तो फिर हम किसी और चीज के इंतजार में लग जाते हैं कि वो चीजें जब मिल जाएंगी तो हम खुश होंगे। तो इस तरह से खुशी को हम इंतजार करते रहते हैं, खुशी का, कि किसी खास चीज के मिलने पर हम खुश होंगे, और उसके मिलने पर भी हम उतने खुश नहीं होते और सोचते हैं कि अब और क्या जिससे हमें मिलेगी खुशी। तो क्या हमने भी इस तरह से अपनी जिंदगी को एक प्रतीक्षारत जीवन में बदल दिया है? सोचिए इस पर और सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

0: मोहित चौहान और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत, राजेश शेखर ने इसे लिखा, कृष्णा का संगीत। वही वाकई जिंदगी में कई बार जो चीजें मिलती हैं हम उससे खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि असफलताओं, निराशाओं और उदासियों का दौर जिंदगी में आता ही है। लेकिन इन परिस्थितियों से निकलने का जब हम हौसला करते हैं तो वो जो चीज है वो हमें अनोखी शक्ति देती है। कई बार स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ होता है तो इससे भी बहुत सी परेशानियां रहती हैं और लगता है कि क्या किया जाए। तो ऐसे वक्त में अगर एक अच्छी सलाह हमें मिले तो क्या ही फायदा हो। तो कुछ ऐसा ही संदेश आइए सुनते हैं।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में राउडी राठौर फिल्म का गीत आपने सुना समीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का

एजेंट विनोद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नंदिनी श्रीकर, मुअज्जम और रिजवान, शादाब साबरी और अल्तमश फरीदी की आवाजों में नीलेश मिश्रा के बोल थे प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और आपको बता दें कि 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर।

0: इरशाद कामिल के बोल आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में रॉकस्टार फिल्म के इस गीत में संगीत ए आर रहमान का कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
3: टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक टुक ट

चिलर पार्टी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान, अरमान मलिक और साथियों की आवाजें, नितेश तिवारी के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: भूल बच्चन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, शब्बीर अहमद के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे सखियां सुन सकेंगी अपने फरमाइशी गीत हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नौराई माझी लाडाची लाडाची गा,

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नटाली दे लूसियो की आवाजें थी। स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर सुन रहे हैं चित्रलोक।

हवाई ज्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रोचक कोहली की आवाज में, विभू वीरेंद्र पुरी के बोल और रोचक कोहली का संगीत। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और वक्त है एक अंतराल का।

0: अग्निपथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: कॉकटेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। भाई खुशियों के जो छोटे छोटे पल हमें मिलते हैं उन्हें ही चुनिए, यकीन मानिए इन्हीं से रोशन होती है हमारी दुनिया।
1: जुगनू बन के तू जगमगा जहां।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और दिन भर जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ। अब आज के लिए दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
2: तो देखिए उसका अंतरा है दारा दारा दारा दारा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दारा तारा दारा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संग।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया।

1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों, डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओ माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव,
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। सीहोर जिला इन दिनों प्री मानसून की बारिश से तरबतर नजर आ रहा है। बारिश के चलते भीषण गर्मी से निजात जरूर मिली है, लेकिन आंधी तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि इससे पहले सीहोर में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते दिनों सीहोर जिले के भैरुंदा में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना 4 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमा सानी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किया। पिछले दिनों सीहोर के क्रिसेंट ग्रीन गार्डन के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले के रहटी स्थित नर्मदा के आंवली घाट पर आयोजित कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने माँ नर्मदा की पूजा अर्चना की और कलश यात्रा में शामिल हुई। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने सीहोर में सीवन नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। नदी में फैली गंदगी और जलकुंभी को हटाने के लिए उन्होंने घाट पर श्रमदान भी किया। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान, गेहूं उपार्जन, पेयजल आपूर्ति और जिले में किए गए नवाचारों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीहोर जिला में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। जिले में 7,46,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। वर्तमान तक 87,974 किसानों से 6,44,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सीहोर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 789 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें 221 गर्भवती महिलाएं हाई

0: पाई गईं। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर बाला गुरु के की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित जिला स्तर पर टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में भारत की 16वीं जनगणना का अभियान उत्साह के वातावरण में शुरू हो गया है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रगणक द्वारा घर घर पहुंचकर मोबाइल ऐप के माध्यम से मकानों के सूचीकरण का कार्य किया गया। ज्ञान भारत अभियान के अंतर्गत सीहोर जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहरों के संरक्षण और डिजिटलीकरण को लेकर संयुक्त कलेक्टर जमील खान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। सीहोर की जीवनदायिनी सीवन नदी के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के तहत जिले में लगे शिविरों में 0 से 1 वर्ष के 567 बच्चों का टीकाकरण हुआ। 1 वर्ष से अधिक उम्र के 362 बच्चों को भी टीके लगाए गए। सीहोर के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज द्वारा कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जिले का नवाचार शिक्षा पुंज 0.2 उत्साह के वातावरण में क्रियान्वित किया गया। इसके अंतर्गत जिले में ड्रॉप आउट बच्चों को शाला से जोड़ना, शाला की पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज से जोड़ना, ड्रॉप आउट बच्चों और युवाओं को शिक्षा से जोड़ने वाले प्रयास लगातार किए गए। जिले में 294,408 विद्यार्थियों में से 206,298 विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट की जा चुकी है। शासकीय आरएके कृषि कॉलेज ने जिले में खरीफ से पहले सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण आयोजित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अनुगूंज पहल के तहत जिला न्यायालय परिसर में श्रवण और वाक बाधित समुदाय के लिए विधिक साक्षरता शिविर लगाया। जिले में एक बड़ी उपलब्धि के तहत सीहोर के मास्टर ऑफ ताओ कराटे एसोसिएशन के 38 कराटे खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित ओपन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल किया। सीहोर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैम मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती
1: जी
0: है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत
1: जी जी
0: रिच
1: मैम
0: प्रोटीन
1: बड़ा।
0: होता
1: जी
0: है।
1: जी मैम
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का
1: हाँ
0: सिर्फ?
1: मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूं धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस
1: जी
0: समय
1: जी
0: आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग
1: जी
0: आपके
1: मैम,
0: पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे,
0: अच्छा, सिर्फ
1: और
0: चार
1: अभी
0: पांच पेड़?
1: जी जी
0: भई हमने
1: बस
0: तो
1: 4-5 ही।
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इतने 5-6 पेड़।
0: अच्छा, जी बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए,
1: देवासनम का सुनना है मैम,
0: कौन सा?
1: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाना
1: नहीं नहीं
0: क्यों?
1: मैम,

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार जी। जी
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गांव, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक
0: अरे
1: टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गांव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहां जाते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं, और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टाइल मार्बल और सीटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, तो हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी।

0: थे, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है, तो ये नॉर्मल सी लगता है।
1: जी, तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुंचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है। और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं। जय अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्थर की, तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है
0: आपको
1: कि
0: सबसे मन
1: वो,
0: जी आपको पता है ये पहलगाम और
1: हाँ,
0: कश्मीर में पड़ता
2: उस
0: है।
2: सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संबोधन का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे कुछ ही पलों में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्थित आकाशवाणी विविध भारती के समस्त केंद्रों से प्रसारित इस विशेष सजीव प्रसारण में मैं मकान सिंह चौहान अपने साथी असीम कैथवास,
1: स्वास्थ्य संवर्धन
0: नीरज कुलकर्णी, वैभव मंडलोई और नानक सिंह बंडोत के साथ आप सभी का सादर पूर्वक अभिवादन कर रहा हूँ। नमस्कार। बताओ, आज हम उपस्थित हैं मांधाता की पावन नगरी ओंकारेश्वर में, जहाँ माँ नर्मदा के तट पर अध्यात्म के साथ साथ आज और अध्याय लिखा जा रहा है। आज 19 जून है और ये विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष गरिमामयी कार्यक्रम में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रही है देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति के विशेष आतिथ्य में आयोजित हो रहे इस गरिमामयी कार्यक्रम में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की उस परिकल्पना और योजनाओं को नई दिशा मिल रही है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी मध्य प्रदेश की धरती शहडोल में साकार करने का संकल्प लिया था। श्रोताओं, सिकल सेल एनीमिया विशेष रूप से हमारे जनजातीय भाई बहनों को प्रभावित करने वाली एक आनुवांशिक बीमारी है। आज का यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस रोग के समूल नाश के लिए एक महासंकल्प है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को सिकल सेल से मुक्त बनाना है। आज माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति यह दर्शाती है कि देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का स्वास्थ्य और खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी ने सिकल सेल एनीमिया जूझते आदिवासी भाई बहनों को बहुत ही निकटता से देखा है, उनकी पीड़ा और समस्याओं को दिल की गहराइयों से अनुभव किया है। अपने भाई बहनों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर रोग के समूल उन्मूलन के लिए वे कृत संकल्पित होकर आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया और इसे अपनी सरकार की कार्य सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज ये एक जन अभियान बन चुका है, जिससे हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है, जुड़ना चाहता है और हमें पूरा यकीन है कि ये महाअभियान सिकल सेल एनीमिया के समूल नाश के लिए निरंतर चलता रहेगा। हम आपको बताएं कि माननीय राष्ट्रपति, देश के माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और इंदौर खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ गणमान्य अतिथिगण कुछ ही क्षणों में यहाँ मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। भी यहाँ पर मंच के पीछे दाहिने तरफ एक विशाल फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है और इस फोटो प्रदर्शनी का माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री के साथ माननीय मंत्री गणों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। इस फोटो प्रदर्शनी में माननीय मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के उन दुर्गम और ऐसे आदिवासी अंचलों में जहां सिकल सेल के रोगी बहुतायात में हैं, वहां भ्रमण किया गया और उन भ्रमण की तस्वीरों को यहां फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से माननीय अतिथियों द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को माननीय राज्यपाल स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार से वे कृत संकल्पित हैं इस सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति को लेकर। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। इससे पहले जब वे गुजरात में थे, जनप्रतिनिधि के रूप में थे, तब भी उन्होंने वहां इस अभियान को आगे बढ़ाया और जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर यहां आए तो उन्होंने आरंभ से ही इस अभियान को गति दी और आज ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का एक उदाहरण है जो अब निरंतर स्क्रीनिंग के माध्यम से, खासकर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, वहां लगभग हर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सिकल सेल की स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग के साथ ही परीक्षण और टेस्ट भी उपलब्ध है। और आपको बता दें कि माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आ चुके हैं और समस्त सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत अभिवादन किया जा रहा है। आज हर्षित है पावन नगरी ओंकारेश्वर की इस धरा पर और हर्षित है ये सारी जनता जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिवादन कर रही है, उन्हें इतनी समीपता से देखने का उन्हें प्राप्त हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया कल 18 जून को ओंकारेश्वर पधारी और संध्या में ओंकारेश्वर और ममलेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं और उनके दर्शन किए, पूजन किया और उसके पश्चात पावन पवित्र सलीला मां नर्मदा के तट पर महाआरती में सम्मिलित हुई और आज ये भव्य आयोजन कहीं न कहीं इस दिशा में प्रसार और भारत सरकार के उस संकल्प को जिस अंतर्गत राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत पूरे देश में सिकल सेल रोगियों का परीक्षण स्क्रीनिंग करना है और 2047 तक इस व्याधि से, इस रोग से कोई भी शेष ना रह जाए, ये लक्ष्य है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उनके इस प्रयास में देश की सरकार और समस्त राज्यों की सरकारें और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आंगनवाड़ी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और जो सिकल सेल मित्र हैं वे हर क्षेत्र में जा रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें सिकल सेल की बीमारी से बचना है, किस प्रकार से उसका उपचार अब मध्य प्रदेश सरकार के विभागों द्वारा हम सभी के लिए आसान हो रहा है, ये सभी देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय मंगूभाई पटेल मंचासीन हो चुके हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आयुष मंत्री मंचासीन हो चुके हैं। कुछ क्षणों में माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच पर उपस्थित होने वाली हैं और उपस्थित होते ही इस गरिमामय समारोह का शुभारंभ होगा दीप दीपन के साथ।

0: साथ दीप प्रज्वलन के साथ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आज यहाँ पर जो जनसमूह है वो न केवल खंडवा और अंचल के क्षेत्रों से बल्कि प्रदेश के लगभग 17 जिलों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो खासकर सिकल सेल प्रभावित क्षेत्रों से संबद्ध हैं, वे सभी यहाँ पर आए हैं। और माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सिकल मित्रों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और इस उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ साथ मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो विभाग के अंतर्गत जो चिकित्सा कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो टीम है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम बहुत ही भव्यता और दिव्यता लिए हुए हैं, क्योंकि आज हम पावन नगरी भगवान श्री ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की नगरी में उपस्थित हैं। और ये एक ऐसा अवसर है जब दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति आज यहाँ ओंकारेश्वर में उपस्थित हुए हैं, तो समूची नगरी अपने आप अभिभूत कर रही है, धन्य मान रही है। और खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पावन नगरी बहुत ही भव्यता और दिव्यता लिए हुए हैं। मानधाता की नगरी है ये, जिसे आज हम मुख्य रूप से ओंकारेश्वर के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है यह नगरी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के किनारे और उसके बीच एक द्वीप पर बसी है। इस नगरी का इतिहास, धार्मिक महत्व और भौगोलिक जानकारी तो आप सभी को ज्ञात होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नगरी का मूल नाम मानधाता या शिवपुरी है। पुराणों के अनुसार सूर्य वंश के महान और प्रतापी राजा मानधाता, जो कि भगवान श्री राम के पूर्वज थे, ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बनाया। राजा मानधाता ने यहां नर्मदा के तट पर स्थित पहाड़ों पर बैठकर भगवान शिव की अत्यंत कठिन आराधना की थी। वे केवल नर्मदा जी का जल पीकर वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। राजा मानधाता ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे जन कल्याण के लिए इस स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तभी से इस पर्वत और नगरी का नाम मानधाता पर्वत और मानधाता नगरी रहा। और श्रोताओं, आपको बता दें कि अब वो क्षण आ चुके हैं जब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
1: जी
0: दोनों हाथ जोड़कर सभी को, उपस्थित जनता को अभिवादन करते हुए अपने, और उन्होंने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर सभी लोगों का अभिवादन किया। और अब वे अपने स्थान पर उपस्थित हो चुकी हैं और अब राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान हो रहा है।

0: साथियों और समस्त सभा में उपस्थित जनसमूहों द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान
1: भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुण्यधरा जिला खंडवा में
0: इस कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ होने जा रहा है। और माननीय राष्ट्रपति महोदया, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री द्वारा दीप दीपन का कार्यक्रम आरंभ होगा। और श्रोताओं, आप बता दें कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रदेश द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल, माननीय मंत्री आयुष विभाग श्री इंदर सिंह परमार, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जनजातीय कार्य, इसके अतिरिक्त माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, जो कि संस्कृति विभाग एवं उसके प्रभारी मंत्री भी हैं खंडवा के, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्री नरेंद्र सिंह शिवाजी पटेल भी इस समारोह में मंचासीन है। और माननीय सांसद खंडवा के श्री गणेश्वर पाटिल और श्री नारायण पटेल, माननीय विधानधाता यहाँ पर उपस्थित है। और अब आरंभ हो रहा है इस कार्यक्रम का औपचारिक आरंभ। माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया जा रहा है और देव शक्तियों का आह्वान स्मरण किया जा रहा है। आज एक भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी पर गंभीर चोट होगी।
1: समावेशी भारत के निर्माण का एक राष्ट्रीय संकट

0: यहाँ उपस्थित जनसमूह माननीय राष्ट्रपति महोदया और मंचासीन अतिथियों का हृदय से स्वागत कर रहा है तथा मध्य प्रदेश और हमारी सांस्कृतिक परंपरा में किसी भी सुअवसर का आरंभ देव स्तुति के माध्यम से होता है। पौरी नगरी तो साक्षात भगवान शिव की स्थली है, जहां वे ओंकारेश्वर और बम्बलेश्वर के रूप में दो दो स्वरूपों में विराजित है। हम सभी और अब आपको बता दें कि अब कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। दीपन के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल संबोधित कर रहे हैं।
1: आज कृपा पूर्वक पधारी देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रद्धे द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल जी, सभी विधायकगण और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर डॉक्टर देश की प्रथम महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपने बीच में पाकर हम लोग अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में बहुत तेजी के साथ काम किया है। हम लोगों को याद है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में सिकल सेल उन्मूलन के अभियान का शुभारंभ किया था और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि 2047 में सिकल सेल पूरी तरह से जड़ से समाप्त करके ही चैन की सांस लेते। और आज जब राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तब मैं उनके सामने अपने राज्यपाल जी के द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार हर 2 महीने में एक मीटिंग राजभवन में होती है, कितनी स्क्रीनिंग हुई है, कितने रोगी पाए गए, कितने वाहक हैं, कितने सिकल सेल मित्र बने, जेनेटिक कार्ड कितने बने, शादी के पहले जिस तरह से कुंडली मिलाकर शादी करने की परंपरा हमारे यहाँ है, उसी प्रकार से उन्होंने ये जागरूकता पैदा करने का और नीचे तक इस बात को ले जाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया कि कुंडली के साथ साथ आदिवासी बाहुल 20 जिले जो मध्य प्रदेश में हैं, उसमें जो कैरियर हैं, जो वाहक हैं, वो जेनेटिक कार्ड मिलाए हुए शादी ना करें, जिससे भविष्य में ऐसे बच्चे पैदा ना हों जो सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। और इसलिए राज्यपाल जी का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग देश में सबसे नंबर 1 पर होनी चाहिए और आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग 1,60,00,000 में से हमने कर ली है और 2026 में ही, जबकि टारगेट 2027 में था, लेकिन 2026 में ये हमारी कोशिश होगी कि 1,60,00,000 इन 20 जिलों में आदिवासी बाहुल इलाके में जहां पर सिकल सेल एनीमिया के रोग होने की संभावना होती है, हम अपने पूरा स्क्रीनिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। और इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पिछले वर्ष बड़वानी में आपको आना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण आपका आना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आपको ध्यान था और इसलिए इस विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में हमारे बीच में आई हैं। आपका स्वागत करते हुए हम सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर महामहिम राष्ट्रपति जी का जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
0: मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब माननीय राष्ट्रपति महोदया को सम्मानित करेंगे और आपको बता

0: हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य की एक ताम्र प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय राष्ट्रपति को अर्पित की गई और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को एकात्मता की प्रतीक इस प्रतीक किया है। माननीय राज्यपाल जिन्होंने लगातार सिकल सेल की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा भगवान शिव की मूर्ति भेंट की जा रही है और उपस्थित सभागार में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब किसी भी बीमारी से लड़ने के आपको बता दें कि सिकल सेल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सन 2047 तक सिकल सेल रोग को पूरी तरह खत्म करने या कम करने का लक्ष्य रखा है। इस आनुवांशिक बीमारी से आदिवासी अंचल बहुत प्रभावित हैं। इस अभियान की शुरुआत का जो घोषणा हुई सन 2023 के और एक वीडियो के माध्यम से सिकल सेल अभियान के बारे में जानकारी दी मिशन बनेगा
1: और उस मिशन को मध्य प्रदेश में माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आत्मसात किया गया है। प्रदेश के जनजातीय जनमानस के बड़े वर्ग में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखी जा रही थी जो है सिकल सेल एनीमिया।
2: मैं जब 6-7 की थी तब डायग्नोस हुआ कि मुझे सिकल सेल है। जब मैं एमबीबीएस कर रही थी उस टाइम पर पता चला कि ये बीमारी मेरे पूरे परिवार को है।
3: जैसे मैं जब 7 साल का था जब मुझे पता चला कि मुझे सिकल सेल बीमारी,
2: पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी ना ही मेरे परिवार में इतनी अवेयरनेस थी।
3: काफी चीजें रुकाव आए जीवन में, ऐसा नहीं कि कभी बहुत पेन हुआ कभी दर्द हुआ मुझे, फिर भी मैं लड़ता रहा।
2: ये एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि फैमिली से फैमिली मेंबर में बढ़ती जाती है।
3: नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड होता है वो सर्कल शेप का होता है और जो हम सिकल सेल जिनको होता है उनका ब्लड एक सिकल आकार का होता है जिसे हम हसिया बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉट होने के कारण हमारे ज्वाइंट में पेन होता है, ऑक्सीजन की कमी में होती है।
2: सिकल सेल में हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस होता है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर लें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप स्ट्रेस मत लें और साथ ही आप अपनी रेगुलर मेडिसिन लें, टाइमली डाइट लें और अपनी नींद पूरी करें। क्योंकि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो।
1: सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सिकल सेल की जांच, परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग और दवाएं निःशुल्क उपलब्ध है। यही सेवाएं मरीजों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती हैं।
2: जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एमपी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के वजह से मुझे फ्री में सिकल सेल की दवाइयाँ जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया और फॉलिक एसिड प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जो है वो निःशुल्क स्क्रीनिंग सारी जांचें करवा रही है, पेशेंट की सिकल सेल की जांच जो भी HPLC स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सारे निःशुल्क कर रही है, दवाइयाँ वितरित कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है इस बीमारी को लेकर कि आपको इसके साथ कैसे सर्वाइव करना है। मैं सभी सिकल सेल वॉरियर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह देखिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
1: सही जानकारी और नियमित उपचार ही सिकल सेल प्रबंधन की कुंजी है।

यही पुकार सिकल सेल मुक्त हो देश। सिकल सेल रोगी के स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित ये वीडियो हमें संदेश दे रहा था कि किस प्रकार हम सिकल सेल से जागरूक हों और जागरूकता हमें सिकल सेल को समाप्त करने की ओर ले जाए। और अब लक्षित समूह में 100% स्क्रीनिंग पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतों का सम्मान।

0: माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत जामिया की सरपंच डाबिया के सरपंच यहां पर मंच पर उपस्थित हो रही हैं और उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान उनके अथक प्रयास का कारण है, उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उनके लिए है ग्राम पंचायत। और अब ग्राम पंचायत कुम्हार खेड़ा की सरपंच यहां पर उपस्थित हो रही हैं और उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी उनके साथ उपस्थित है और समूचे पंडाल में उपस्थित जन समूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया है। और स्वागत के क्रम में अब अगली स्वास्थ्यकर्ता यहां पर उपस्थित हो रही है मंच पर और माननीय राज्यपाल द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। करतल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं इन प्रतिभाओं से जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अनूठा कार्य किया है, बहुत काम किए हैं और उन्होंने न केवल अपनी पंचायत का 100% स्क्रीनिंग की है लोगों की सिकल सेल जागरूकता के दिशा में और अब वहां पर समग्री सामग्री उपलब्ध करवा कर उनका जीवन खुशहाल बना रहे हैं। और सम्मान की अगली कड़ी में और अब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं।
1: श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ओंकार महाराज के इस प्रांगण में मां नर्मदा की कृपा से सच में ये अमृत कुंभ हो रहा, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर ही विराजमान महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल साहब, आप लगातार हर क्षेत्र के लिए हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं, लेकिन खासकर सिकल सेल के इस पूरे अभियान में आपकी लगातार सक्रियता के कारण से हम आज तक के सारे स्वास्थ्य परीक्षण के रिकॉर्ड तोड़ करके सच में एक बड़े पुण्य के काम को में लगे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता, अभिनंदन करता माननीय महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर श्रीमान विजय शाह जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर इस निमाड़ अंचल की हमारी सारी जनता, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबका भी नमस्कार करता हूँ। नर्मदा महारानी की, ओंकार महाराज की। आज अद्वैत वेदांत के दर्शन के शिरोमणि श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज की इस तपोभूमि में हम सब निमाड़ के धुनी वाले महाराज और साथ ही साथ क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा की भी कर्मस्थली के क्षेत्र में ये एक अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, जिसके माध्यम से भविष्य की पीढ़ियां अपना जीवन धन्य करेगी और हम जन जागरूकता के माध्यम से एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी का नाम और जिसका प्रभाव देख करके भविष्य की कई पीढ़ियों की बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले कदमों को रोकने का संकल्प आज का ये राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके सानिध्य में हम अब पुनः ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारे राज्य में सच में आज का ये मंच इस प्रकार से भी हमको शोभा दे रहा है कि एक तरफ सादगी शुचिता और संघर्ष की मिसाल महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच ऐसे पवित्र संकल्प के कार्य को पूरा करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारी है। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब सच में जिस प्रकार से ये बड़े अभियान में लगे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पूर्ववर्ती काल में

0: मुख्यमंत्री थे तब मंगूभाई पटेल साहब के साथ इस सिकल सेल की गंभीरता का एहसास करते हुए उन्होंने उस समय इस पूरे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए एक अभियान चलाया था और अब राष्ट्रीय स्तर पे इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं कि हाँ हर हालत में हम अपनी भावी पीढ़ी को इस कठिन मार्ग पे जाने से रोकेंगे, उनके जीवन को बचाना ये हम सबका उत्तरदायित्व है। वैसे सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है, एक तरफ हमारे मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बढ़ रही है, कहा हमारी पिछली सरकारों में 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हम 32 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदिक कॉलेजों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ हेल्थ चिकित्सा शिक्षा सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे अज्ञात एक तरह से इस कठोर बीमारी के वो जीवाणु जो हमारे लिए उस देव दानव युग के अंदर दानवों की याद दिला देते हैं, जाने अनजाने अभी हमने वीडियो देखा है और वीडियो के माध्यम से पीढ़ियों का ये जो जाने अनजाने का न जाने का अपराध बाद की पीढ़ियां भुगतती है, मुझे इस बात का संतोष है। आज के इस दौर में जब मैं इस तरफ देखता हूं तो हमारे विभाग के माध्यम से सच में उत्कर्ष काम किया, बड़ा काम किया, साथ ही आज वो पंचायतें जिन्होंने अपने आप को स्क्रीनिंग के माध्यम से अपनी समूची आबादी को स्क्रीनिंग करते हुए दक्षता से काम किया उनको भी बधाई देना चाहूंगा। आज अपने इस मंच पर ही खासकर जब मैं आपके बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भी जो प्रतिबद्धता है उसके आधार पर पीएम जनमन योजना के माध्यम से भी और यहाँ खरगोन में हमारे क्रांति सूर्य टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बना करके हम आदिवासी अंचल के लिए विकास के सभी पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती राजा भभूत सिंह जैसे जनजाति महान नायकों के नाम पर हमने अपनी सरकार की कैबिनेट की है। छिंदवाड़ा में बादल भोई जनजाति संग्रहालय, जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भगोरिया को राजकीय उत्सव का हमने नाम दिया है, जनजाति कन्या छात्रावासों के नाम भी हमने अपने आदिवासी नायकों के नाम पे करते हुए अपनी वो प्रतिबद्धता बताई, जिसके कारण से आज अगर मैं इस बीमारी की बताता हूँ तो केवल अस्पताल नहीं बल्कि एक साथ जन आंदोलन बनाकर 4 मोर्चों पर हम एक साथ लड़ रहे हैं। एक तरफ स्क्रीनिंग करते हुए प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करते हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा रोग प्रबंधन में भी गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके उनके परामर्श की और भविष्य की पीढ़ी को बचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है, जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से भी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए सिकल सेल कार्ड भी बांटे जा रहे हैं और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 3700 से अधिक सिकल मित्र एनसीसी कैडेट की तरह जन जन तक इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। आइए हम सब इस पवित्र कार्य के लिए पुनः ओंकार महाराज की धरती पे मां नर्मदा के आशीर्वाद से महामहिम राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में फिर संकल्प करें, मध्य प्रदेश की धरती पर जब तक हम इस पूरे अभियान में सफलता नहीं पा लें तब तक हमारा ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। राम राम, जय श्री राम।
1: माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उद्बोधन में उनका एक संकल्प नजर आया और वो संकल्प है सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक पूरी तरह से समाप्त करना और हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना, उन्हें स्वस्थ बनाना, यही माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है। और अब उस संकल्प को साकार करने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और वे अब संबोधित करेंगे।
2: सभी को नमस्कार। विश्व सिकल सेल दिवस ओंकारेश्वर के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्री जनजातीय विभाग श्री कुंवर विजय शाह जी, मंत्री आयुष विभाग श्री इंद्र सिंह परमार जी, राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल,

सभी अधिकारी गण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रदेश में बल्कि सारे विश्व में आज सिकल सेल दिवस मना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदया आपकी उपस्थिति से प्रदेश की जनता गौरवान्वित हुई है। प्रदेश में विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन जन जागरूकता, जन भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। माननीय महोदया, सिकल सेल रोग एक समस्या बल्कि जनजातीय समुदाय सामाजिक विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 को जनजातीय समाज के सम्मान एवं उत्थान को नई दिशा देने की पहल जनजातीय गौरव दिवस के साथ मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन का मिशन प्रारंभ किया था। प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 में शुभारंभ किया। जनजातीय समाज यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है, जिन्होंने जनजातीय क्षेत्र में इस गंभीर अनुवांशिक बीमारी की चुनौतियों को समझते हुए देश भर में सिकल सेल उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन बनाया है। राज्य सरकार ने इस अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अब तक प्रदेश में 1,32,00,000 से अधिक लोगों की जांच हो गई है। यहाँ उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 2026 के एंड में हम जांच पूरी कर लेंगे, बाद में दवाई की जो बात है वो दवाई हम करते रहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और जनजातीय समुदाय के उत्थान और स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता के प्रयासों से आज पूरा देश, विशेषकर जनजातीय समाज बीमारी से प्रति जागरूकता है और सतर्कता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2023 में जब इस शहडोल में ये शुरुआत किया प्राइम मिनिस्टर ने, तभी से सारे देश में ये उन्मूलन का काम चल रहा है और अभी तक सारे हिंदुस्तान में 7,21,00,000 से भी ज्यादा जांच हो गई है। मैं समझता हूँ कि जनजाति समाज के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उस रैती जनजाति समाज के एक अंग होते हुए उनका और केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी को बताना चाहूंगा कि प्रदेश में सिकल सेल एलोपैथी दवाइयाँ के साथ आयुर्वेदिक दवा का उपयोग भी प्रयोग भी शुरू किया है, जिसके प्रारंभिक परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। आपकी गरिमा भाई उपस्थिति में सिकल सेल रोगियों की अपील करूंगा कि रोग उपचार में एलोपैथी दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा का भी उपयोग करें, आपको जरूर उसमें फायदा मिलने वाला है। स्क्रीनिंग के बाद दिए गए डिजिटल कार्ड, जीनेटिक कार्ड, यहाँ बार बार दोहराया है कि कार्ड वैवाहिक संबंधों के लिए ऐसे समझो जन्म कुंडली है, उसके समान इसका विवाह संबंधों में पूर्व मिलान जरूर करें। यदि युवक और युवती दोनों को सिकल से रोग पीड़ित है तो शादी नहीं करें, क्योंकि यह पाया गया है कि ऐसे दंपति की संतान में जन्म से सिकल से रोगी होने की संभावना बढ़ जाती है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी व्यस्तता के कार्यक्रम भी समय निकालकर आप यहाँ आए, मैं हृदय से, दिल की गहराई से यह आभार आपका मानता हूँ, क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ लॉन्चिंग किया, उपराष्ट्रपति भी डिंडो

0: आ गए और आज हम ओमकारेश्वर में आपको यहाँ उपस्थित है के हमारा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है के तीनों नेता ये सिकल सेल के विश्व सिकल सेल दिन में उनकी उपस्थिति रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय।
1: माननीय राज्यपाल महोदय के उद्बोधन के बाद अब वो अवसर आ चुका है जब उपस्थित यहाँ की जनता माननीय राष्ट्रपति महोदय को सुनना चाहती हैं और उसी के तारतम्य में अब बहुत शीघ्र माननीय राष्ट्रपति महोदया हम सभी को संबोधित करेंगी और उनके संबोधन के लिए समूचा पांडाल संयमित और अनुशासित होकर उन्हें सुनने के लिए आतुर हो रहा है। मंच पर माननीय राष्ट्रपति बैठी हुई हैं और बहुत जल्द हमें संबोधित करेंगे और अब वो डेस्क की तरफ बढ़ रही हैं और कुछ क्षणों में हमें संबोधित करेंगी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमें संबोधित कर रही हैं।
2: इंटरनेशनल सिकल सेल एनीमिया दिवस के इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, कुबेर विजय शाह जी और नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजनों, सभी को नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के जो मुझे अवगत कराया गया है 7 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त मॉडल के रूप में देश में पहली बार ऐसा मिशन प्रारंभ किया गया है। इसे केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है, इसे जनजातीय स्वास्थ्य का मुद्दा, आनुवंशिकता से जुड़े जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की चुनौती के साथ ही सामाजिक आचरण में बदलाव के मिशन के रूप में भी देखा गया है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन की पृष्ठभूमि में अनेक स्तरों पर किए गए वैज्ञानिक और सामाजिक

अध्ययन रहे हैं। ICMR, ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एम्स, NHM, WHO और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय के विभिन्न आयामों पर अध्ययन किए हैं। मैं जानकर खुश हूँ। आज जो मैं यहाँ आने से पहले कुछ स्टॉल को मैं देख रही थी, केवल एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद भी इसमें रिसर्च करके दवा भी रिसर्च करके निकाले हैं और दोनों दवा दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इनसे मुख्य के रूप में आकलन सामने आया है, सिकल सेल एनीमिया का सबसे अधिक प्रभाव मध्य भारत की जनजातियों पट्टी में है। आज मैंने लिस्ट देख रही थी जो स्क्रीनिंग किया गया है, 17 राज्य 17 स्टेट्स को स्क्रीनिंग किया गया है। उनमें से मध्य प्रदेश और ओडिशा में सिकल सेल रोगियां ज्यादा पाया गया है। अनेक परिवार पीढ़ियों से इस रोग से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें बीमारी का नाम तो मालूम नहीं था। अध्ययनों से ये भी पता चला कि भारत की जनजातीय समाज सिकल सेल रोग का प्रसार सामान्य आबादी की तुलना में कई गुना अधिक है। फलस्वरूप देश में पहली बार सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, जेनेटिक साइंस और डिजिटल मॉनिटरिंग को एक साथ जोड़कर ये राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। देश के 17 राज्यों में चलाए जा रहे इस अभियान के प्रति राज्यों ने भी पूरी तत्परता से भागीदारी की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय एवं चीफ मिनिस्टर महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे आंतरिकता से सहित मिशन मोड में इस चीज को लिए हैं, मुझे लगता है ये जो भी आज जिन लोग ग्रसित हुए हैं, उन लोगों का जिस तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। ये पूरी तरह ये केवल इसी पीढ़ी के नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये शायद ये पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं सभी राज्यों के अधिकारियों को, सरकार को मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, ये एक इसको सहजता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको जैसे उन्मूलन किया जाए, पूरा समाप्त किया जाए, इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये क्योरेबल है, ये खत्म हो सकता है। इसके लिए दवा सामने आया है, उसको ग्रहण करने से मुझे लगता है ये देश में और सिकल सेल नाम के कोई बीमारी और आगे भी नहीं आया गया। देवी और स्वजन, मुझे इस मिशन की परिकल्पना ने प्रभावित किया है, इसलिए मैं इस मिशन के तीन प्रमुख आयामों का उल्लेख करना चाहूंगी। पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाए और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की पहल के लीजिए से देखते हैं कि देश में पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या की आनुवंशिक स्क्रीनिंग डिजिटल ट्रैकिंग के साथ की जा रही है। मिशन मोड से जुड़े स्क्रीनिंग का ही परिणाम है कि अभी तक लगभग 2.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, चिन्हित जा चुकी है, और इस रोग के 20 लाख से भी अधिक बाहक यानी कैरियर भी पहचाना जा चुकी है। बाहकों की इतनी बड़ी संख्या से जुड़े चुनौती का समझने की आवश्यकता है। सिकल सेल के बाहक लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं होते, इसलिए उन्हें इसकी भविष्य की गंभीरता का कोई अंदाज नहीं लग पाता। अधिकांश बाहकों को ये नहीं पता होता है कि अपनी संतान को ये रोग क्यों हुआ?

जांच सुविधा किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर तक विस्तारित किया जा चुकी है। गत वर्ष 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 4 लाख से अधिक महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग का कीर्तिमान स्थापित करके इस समस्या के समाधान हेतु अमूल्य योगदान दिया है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को भी परामर्श उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। दूरस्थ एवं दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से निरंतर स्क्रीनिंग की जा रही है। मुझे बताया गया है कि पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण भी किया गया है। इन सार्थक पहल के लिए मैं प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी प्रदेशों के सम्मेलन शक्ति और सक्रियता से हम वर्ष 2047 से बहुत पहले ही देश में से सिकल सेल संबंधी रोगी के उन्मूलन की अपने राष्ट्रीय लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। देश में जनजातीय समुदाय के लोगों के

और इसी के साथ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत विश्व सिकल सेल दिवस 2026 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। आज के हमारे इस क्रम का, जिसका कि मध्य प्रदेश स्थित समस्त आकाशवाणी और विविध भारती केंद्रों से सीधा प्रसारण हुआ, उसकी क्रिएटिव टीम में हमारे यहाँ उपस्थित रहे आकाशवाणी इंदौर और खंडवा की कार्यक्रम एवं तकनीकी टीम, जिसमें शामिल रहे नानक सिंह बंडोत, नीरज पाटिल, वैभव मंडलोई, नीरज कुलकर्णी, विद्याधर मुले, मुकाम सिंह चौहान, चिन्मय दीक्षित और असीम कैथवास। और हमारे इस समग्र प्रसारण के लिए मार्गदर्शन एवं नियोजन कार्यक्रम प्रमुख राजेश एवं उप निदेशक अभियांत्रिकी अभय कुमार गुप्ता का रहा। और अब मैं मुकाम सिंह चौहान आपको स्टूडियो लिए चलता हूं। नमस्कार।

0: इंद्राणी रिज्व और राजकुमार रिज्वी की आवाज़ में हम सुन रहे थे इस नगमे को। बशीर बद्र ने जिसे लिखा और बेनी सतामकर ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
5: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे नगमा उर्दू मॉडर्न गज़ल एल्बम से। तलत महमूद ने इसे गाया, इब्राहिम फैज़ इसके गीतकार हैं और संगीतकार हैं ताज अहमद। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अगली नज़्म जो गाई है हेमंत कुमार ने। संतोख सिंह इसके गीतकार हैं और तरसीम लाल इसके संगीतकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग में आइए सुनते हैं नॉन फिल्मी गीत एंड गजल्स एल्बम से मन्ना डे के द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ यह नगमा, जिसे लिखा है मधुकर राजस्थानी ने।

मॉडर्न नॉन फिल्मी गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजे हुए खयाम के संगीत के साथ इस सुंदर से नगमे को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला।

माजू की है, गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एल्बम से। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने इसे गाया है, साहिर होशियारपुरी ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह ने ही इसे संगीतबद्ध किया है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला नगमा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया।

0: इसके बाद राष्ट्रपति आज से उड़ीसा के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तीन दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंच गया। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से सजा हुआ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
5: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
6: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
6: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर

0: हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में। हसरत जयपुरी इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, वफा कर।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से, महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल और एन दत्त के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

ಅವ್ಯಾಧಿ ಅಧೀನರೇ.

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज़ के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर तय कर रहा है एक बढ़िया मजबूत सी बात को और बड़े प्यारे से जज्बात को, और इन्हीं बात और जज्बात के बीच में बात आती है कि सुरीला सफर में हम जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है? तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफ़र में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं, और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ विचार जो हैं वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल के दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिखती है। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं, हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रोमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायूनी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं नहीं। दार्शनिक जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा, कैफे आजमी, देशभक्ति, कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज, प्रेम धवन, सुगम और विविध, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति, पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं सब अपनी जगह महान थे, सब किसी एक को पसंद करना कठिन है। और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों शायरों के सामने चुनौती आने लगी, कोई एक लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे वे हमारे अनकहे एहसासों को आवाज दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें, भावनाएं रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस प्यार बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं। और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं, उस गीत में पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी। तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा और उसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

ये खूबसूरत से नगमे जो लिख जाते हैं या जिनने अपनी धड़कनों को शायद पिरो दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत से भी हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा पंक्तियां कौन सी हैं, तो हमारे श्रोता लिखता है, ध्वजा से हैं खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के। आहा, कितनी बढ़िया है ना। हमारे श्रोताओं ने कवि की कल्पना का चमत्कार, यह उम्दा लाइन जहन में आती है। जी बिल्कुल। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये कौन चित्रकार है, ये कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने बताया कि जितेंद्र पर फिल्माया गया कवि प्रदीप की यह बेहतरीन रचना है और संगीत सतीश भाटिया का। हमारे श्रोता ने पसंदीदा पंक्तियों में तो पूरा ही लिख दिया, तपसियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेर दार घेर दार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए रुकश दीवदार के, गाली चाहिए गुलाब की बगीचे बहार की, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। जी बिल्कुल। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंखें एक है उसकी हजार हैं। जी ये पंक्ति बहुत खूबसूरत है जो सबको पसंद आ रही है। हमारे श्रोताओं ने, अच्छा आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरुआती जो फिलर बजाया था उसके बारे में आप बात करें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इसकी हर पंक्ति पसंद है। जी बिल्कुल। हमें भी हमारे श्रोता ने बताया कि बहुत खूबसूरत गीत है और प्रकृति का बड़ा प्यारा सा चित्रण है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, बेहद खूबसूरत पंक्ति है। जी बिल्कुल। हम कोई एक शब्द को पकड़ सकते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, गीतकार का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, या कहते हैं कि गीतकार अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं, उनकी लिखनी से मोती टपकते हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। कितना खूबसूरत गीत हमने सुना है। अब इस गीत के बाद अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनके प्रिय गीतकार जो हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। मिर्जा गालिब अगर जिंदा होते तो साहिर की शायरी सुनकर वाह वाह कह उठते, ऐसा उनका कहना है। और चोट खाया प्रेमी हो, सभी तरह के गीत लिखे उन्होंने, जिंदगी भर साथ निभाने वाला, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीतों के बारे में उन्होंने कहा है। और उसके बाद हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया के सभी गीतकारों ने अपने खास अंदाज में बेमिसाल गीत दिए हैं, उनमें से एक चुनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत मुश्किल है। अब 1957 में आई फिल्म साधना में मर्द को जन्म देने वाले गीत के लिए उन्होंने बहुत प्यारा गीत दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गीतकार अपनी कलम से क्या खूबसूरती से उस बात को, उस भावना को निकाल देते हैं जिसे कहना शायद शब्दों में कठिन पड़ जाए, शायद गद्य में कठिन पड़ जाए, पर पद्य में बड़े प्यार से लिख देते हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि जो इनके गीतों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, सिर्फ तीन शब्दों में लंबी बात है और शब्दों का चित्रण निरूपण विश्व को रचने वाले रचनाकार की प्रतिभा का बहुत बड़े तरीके से हम आकलन करेंगे। और गीत रचना किसी संगीत धुन और भावनाओं का गहरा पुल है और अनुभवों को छू लेती है। और सच बात है, गीतकार शब्द नहीं लिखते, हमारे श्रोता लिखते हैं, वे शब्दों के जादूगर होते हैं जो चंद शब्दों में पूरी दास्तान पिरो देते हैं। हमारी खुशियां, आंसू, यादें, सब कुछ अनमोल म्यूजिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। आमजन कहीं कह नहीं पाते वो बातें गीतकार, कवि और शायर अपने शब्दों में कह देते हैं। सही बात है। और इन्होंने तो, एक और हमारे श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों के नाम भी लिखे हैं और हम उन सब गीतकारों की उस कलम को प्रणाम करते हैं कि क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी, यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कलात्मकता को बढ़ा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो आप ज़रूर पहुँचाइए अपनी अनुभूतियाँ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि व्याकरण शब्दावली ही नहीं, रचयिता के व्यक्तिगत अनुभव, अनुभूतियाँ, भावनाओं, जीवन का सार होता है। गीतकार जिंदगी लिखा करते हैं, शब्द नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। अनेरी गीतकारों को याद करते हुए अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं वो साहिर लुधियानवी की कलम से है। और आपको साहिर लुधियानवी का कोई शेर, कोई कविता, कोई बोल इस गीत से हो या ना हो चलेगा, कोई भी शेर अगर पसंद आता है तो आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। तब तक सुनिए ये बहुत प्यारा सा गीत जो कि लिया है कभी कभी फिल्म से,
बस इसके गायक का नाम बता दीजिएगा।

कभी कभी से यह गीत हम सुन रहे थे, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत और गाया मुकेश ने। और यही प्रश्न तो हमने आपसे पूछा था, और इसके साथ हमने एक प्रश्न और पूछा था। हमने कहा था कि साहिल लुधियानवी की कौन सी पंक्ति है जो आपके दिल को छूती है। कभी कहीं और पढ़ी होगी आपने, तो आपने लिखकर भेजी है कि अपनी तबीयतों का कोई गम नहीं मुझे, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। आह क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मशरूफ जमाना क्यों वक्त अपना बर्बाद करिए, दिल लाइन दिल को छू जाती। जी बिल्कुल, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि साहिर की एक लाइन उन्हें पसंद है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। जी, कल और आएंगे नगमाए खिलती कलियां, चुनने वाले मुझसे बेहतर, कहने वाले तुमसे बेहतर, सुनने वाले। ये लाइन हमारे श्रोताओं को पसंद है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने कक्षा 9वीं में देखा था इस फिल्म को, और नौजवान दिल उस समय शायरी सुनकर धड़क गया था। सही बातें, होता है ऐसा। और हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी अपनी पसंद के शेर हम तक पहुंचाए हैं जो उन्हें पसंद हैं। इसके साथ ही और भी कई सारे आए हैं, उन्हें बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, जैसे कि अभी ना चाहो छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, संसार की हाई शर पर बस इतना

0: फंसाना है, एक धुंध से आना है। बहुत सही बात आपने लिखी, बहुत बढ़िया शेर आप लिख रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है। कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है। वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कने लिखता है। सही यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता बल्कि जज्बात, उसकी धड़कने, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगे और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है। और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ उनके लिखे हुए कुछ नगमे, कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया है कि हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं। वो लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है और ये गीत सभी को पसंद है। हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं। कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
4: मैंने तेरे

सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहाँ से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक बकिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना, वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म में कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी, या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियाँ बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं, मुकेश ने गाया, सलिल चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकंदा के लिए राष्ट्रीय

नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, 22 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है। इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हमारे उनके लिखे गीतों को वहाँ तक पहुँचाना, विश्व स्तर तक पहुँचाना, वह भी बड़ी बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सुहाना सफ़र सुहाना कहाँ होगा, योगेश जी, माया, गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं, रोते हुए को हंसाने वाले निदा फाजली जी, पूरी हीर राजा पद्य वद्य करने वाले कैफी आजमी जी, सच बात है कितना कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सकें। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से। और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है और इस गीत को आपको सुनना है और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है ना, और गीतकार के साथ संगीतकार कौन है, और इनका लिखा कोई भी वाक्य या कोई भी पद अगर आपको पसंद आया है, कोई कविता या इसी गीत से कहीं से कुछ भी, तो बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये गीतकार गोपाल दास नीरज है। तो गोपाल दास नीरज की किसी भी रचना को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और ये गीत सुनिए, बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का। तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत उकेरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा, कारवा गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, गोपाल दास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद है, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपाल दास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी गीतकार हैं, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियाँ आई थी गोपाल दास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज मेरे पापा को सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल। गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है, इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियाने की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपाल दास नीरज, मम्मी वहाँ पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी, और इतनी ज़बरदस्त फ़ैन हुई कि उन्होंने मुझे झरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं, और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं, परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल में लाकुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे जरा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, ज़रूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का ये गीत। हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के ज़माने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एसडी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आरडी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर

गीतकार हैं, उनकी सबसे बड़ी बात है कि लेखनी के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहां सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल, हमारी गौशोता ने लिखा है कि वो नीरज, गोपाल दास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो सुबह 4 बजे तक बैठा रहा, नीरज लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बुलावे पर वो आए थे। मजरूर सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने, बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां जवां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरूह के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सवा मांगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया, लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म, जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है। हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव बर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया। बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैरी, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम, पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि कुमार, बाराबंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है। परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज की इस कार्यक्रम सुरीला सफ़र का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है. जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं. कभी और किसी दिन सुनाएंगे, पर आज का, आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है. आइए सुनते हैं इस गीत को. आज्ञा दीजिए, शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हों तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो.

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

0: 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लाल।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत हम किसी से कम नहीं। मोहम्मद रफी के साथ सुषमा श्रेष्ठा है। गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अंतिम गीत नील कमल का, मोहम्मद रफी की आवाज है। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है रवि का।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: उपलब्धियां हासिल की है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे उनमें से स्क्रीनिंग का के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मिशन 2047 के तहत लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति आज ओडिशा के रायरंगपुर पहुंचेंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा के दौरे पर जाएंगे, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रहेंगी। दोनों नेता सुबह मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गाँव पहुंचेंगे, जहाँ वे पवित्र स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्किल सेंटर तथा स्कूल का दौरा करेंगे। इसके बाद वे रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वित्त वर्ष में बिहार में रेल अवसंरचना के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं पहले से ही प्रगति पर हैं, जिनमें पटना के हॉर्डिंग पार्क में 5 अतिरिक्त प्लेटफार्म और फतुहा रेलवे स्टेशन का विकास शामिल है। रेल मंत्री ने छपरा से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को आज रवाना करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जांच करने की सलाह दी गई है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि 3 मई की परीक्षा के एडमिट कार्ड पुनर्परीक्षा के लिए मान्य नहीं होंगे, क्योंकि कई उम्मीदवारों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उज्जैन में मेडिसिटी, साइंस सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर यादव ने कहा कि गुजरात की तरह राजधानी भोपाल में गिफ्ट सिटी बनाई जाएगी, जिससे इकाई सिटी यानी एजुकेशन, नॉलेज एंड एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार करीब 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। प्रदेश में संस्कृति विभाग द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्र और शिल्प कला से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के सुप्रतिष्ठित कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं मौसम की। सामान्यतः 15 से 16 जून तक दस्तक देने वाला मानसून इस बार करीब 10 दिन की देरी से 25 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। जून माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है, जिससे खरीफ की फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम के गोविंद नगर बनखड़ी कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा पर लगी रोक को हटा दिया है। शिवपुरी में अवैध कॉलोनी के विकास लाइसेंस और अनुमतियों की कड़ाई से निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय सेल का गठन किया गया है और गुना कलेक्ट्रेट में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन विभाग के द्वारा मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थाई प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को

0: वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी।

0: करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के

0: केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 917827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही ना हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में, प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज़ है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल है और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दस्त मुरलिक धुन सुन आई राधे जमुनक तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई।

लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगिन देश दे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न झट झट सगन का सगन का किट झट झट सगन का जी सगन नदा साधा किट झट सगन का साधन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर

0: करो मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही हूँ।
0: शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना

0: अच्छा बताइए, क्या करती हैं आप?
1: इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रखी है।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं एलईडी, बिजली पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधार के भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं,
1: जी हाँ
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे, क्योंकि इतने समझदार हो गए।
1: हाँ काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12वें साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो सुन लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
0: नीता मिश्रा
1: जी, आप
0: नीता,
1: कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए,
1: जी,
0: लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदाबांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि
1: हाँ,
0: उमस
1: गर्मी
0: बहुत हो
1: बहुत
0: जाती
1: ज्यादा,
0: है।
1: गर्मी बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए, आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना।
0: किस तरह की किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: फिलहाल तो नॉवेल अच्छा।

0: लगते हैं, जैसे गोदान है, गबन है, ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है, मैंने लगभग 8-10 तो नॉवेल पढ़े ही पढ़े हैं। और बाकी किताबें बढ़िया लगती हैं पढ़ना, जैसे ये लड़कियों वाली आती, मेरी सहेली है।
1: जो महिला पत्रिकाएं आती हैं वो आप पढ़ना पसंद करती हैं, बाकी आप उपन्यास बहुत सारे, जैसे आपने बताया मुंशी प्रेमचंद जी के अधिकतर उपन्यास आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा साहित्य आप पढ़ती हैं जिसमें हमें
0: पढ़ना
1: बहुत
0: मतलब लगभग तो सभी कुछ, छोटे थे तो कॉमिक्स में बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्सों का जमाना तो गया, लेकिन अब ये किताबें बढ़िया लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब बचपन में हम थे तो कॉमिक्स का जमाना था और वो भी आपने बहुत पढ़ी हैं। आप गाने सुनने की भी शौकीन हैं, तो किस तरह का संगीत पसंद है आपको, आज के जमाने के जो आज के दौर
0: गाने
1: के गीत हैं वो पसंद करती
0: आजकल
1: हैं?
0: के भी पसंद है, लेकिन पुराने गाने, ओल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो पुराने गाने ज्यादा पसंद है, खास तौर से लता जी से।
1: तो उस सुनहरे दौर का लता जी का गाना आपकी पसंद का अगर हम पूछें तो वो कौन सा गीत है?
0: बहुत सारे हैं,
1: आज जो
0: मुझे
1: गीत आप
0: याद
1: सुनना
0: नहीं आ
1: चाहती हैं
0: रहा,
1: वो बताइए।
0: मुझे सुनना है मैं हूँ खुश रंगीना, हिना फिल्म का गाना।
1: आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगे, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा 3री कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए है अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ,
0: अच्छा
1: जब मौका मिलता है ना तब भी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए, आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट। आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है, जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं,
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है। दरअसल ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वो जो देते हैं, वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जो कदम रखते हैं वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, हम किनसे बात कर रहे हैं इस समय? कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम। जी
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: मैडम,
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है। खाने के अलावा जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती है आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा
1: उसको
0: खास ध्यान
1: हाँ
0: रखना पड़ता है।
1: उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर फिर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है।
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं डम डम डिगा डिगा मौसम बीगा बीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी। बस
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे ही रहती हूँ
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है,
1: जी मैम जी।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: मैम मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी।
1: जी। मैं सागर की हूँ और झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर ही रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे साजन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएं कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है?
1: अभी हाँ छोड़ा है मैंने। अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके, तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी।
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है।
1: जी 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अब भी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी
1: हाँ
0: उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है, तो बच्चों
1: हाँ
0: में जो संस्कार पड़ते हैं, खास तौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: हाँ पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके
1: अभी
0: अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी अभी स्टार्ट किया है, और राइटिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं, तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से
1: हूँ।
0: कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: भुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम,
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वही तहसील खुरई पे साइड है भुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही तो है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं। साइकिल
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन-कौन हैं?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और एक भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम,
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: अभी 1 साल पहले।
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: यस मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम,
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और साथ
0: आपने
1: में जानकारियां भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।

0: मैं मुझे इसमें सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना और मतलब सॉन्ग को गाना, मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
1: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है? अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहानी है।
0: प्रतिभा रहाने जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलेंटियर जाती हैं,
1: हाँ
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप
1: हाँ
0: कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह
1: और
0: की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ,
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ किस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग

0: अगर हम थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
1: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
0: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते तो अंदर से खुश होते।
1: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है।
0: हाँ
1: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया ये सॉन्ग सुनना है।
1: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687088, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

0: अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध से बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।
1: जिंदगी कैसी है पहले

0: रघु तो हंसाए, कभी के रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभव ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

फिर तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप ना तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 2.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रही और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया, मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा, जो पास के कमरे से सब देख रही थी, वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए? अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई ना कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो? तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

0: मनिया।
1: अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है।

आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो का।

0: आह मानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है, बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है, तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
7: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
9: अनजान ऐप से बचें।
10: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
0: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी।

0: गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और नीहू का लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं
1: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं प्रिय अजीत जी और विमलेश जी आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है, हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी देखिए यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय है जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं डल झील का पानी मीठा है यहां भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं लेकिन अब यह झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं श्रोताओं बात यहीं पर खत्म नहीं होती झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है बल्कि यह झील कश्मीरी जीवन शैली संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है
1: तो श्रोताओं ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in और हाँ
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए 8800-440-559 आप हमें यानी CITNCRT को इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण
2: जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था
1: थोड़ा सा कंबल था
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए मैं जोर से चिल्ला उठा कौन हो तुम मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुड़कते और चीखते चिल्लाते भागे इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा मैंने उन सब को जमीन पर छोड़ दिया छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाज

बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए।

0: ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा।
1: मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद नहीं ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शेड्यूल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है, तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्व

0: स्वास्थ्य विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Sarabjit Kaur.
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक

0: किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:10 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर, रायरंगपुर में 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस का कार्यक्रम में शिरकत की, प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में सड़क सीवर निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन, 6-लेन फ्लाईओवर की भी घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। करीब 70 लाख पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज भी मिला है।
9: भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाली युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11:15 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे, जहां वे आदिवासी पवित्र उपवनों और कौशल केंद्र में सहभागिता करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:00 प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचेंगे, जहां वे पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे और 18,880 करोड़ रुपए की 23वीं पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि स्क्रीनिंग का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है।
10: पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर प्रदेश में सिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने, शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रतिनिधियों तथा NCC कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे विश्वास

0: रिंग रोड से रोबोट चौराहे तक सिक्स लेन फ्लाईओवर के निर्माण की घोषणा भी की गई।
1: कनाड़िया रोड से खजराना मंदिर तक का लिंक रोड लगभग 10 करोड़ की लागत से 1400 मीटर से लेकर 18 मीटर की चौड़ाई में किया जाने वाला है। ट्रैफिक के अत्यधिक दबाव के कारण से रोबोट चौराहे पर एक सिक्स लेन फ्लाईओवर 50 करोड़ की लागत से बनाने की घोषणा करता हूँ।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 से ही भेजे जाएंगे और उम्मीदवारों को नीले सत्यापन चिन्ह की जाँच करने की सलाह दी गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक दिवसीय बिहार दौरे के दौरान आज विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। पटना में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से बिहार के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई और उद्यमियों और स्टार्टअप से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एस के जैन का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर लिया है। राज्यपाल ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत कुलाधिपति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए कुलगुरु की नियुक्ति होने तक प्रबंध संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक शर्मा को कार्यवाहक कुलगुरु नामांकित किया है। धार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद रहीं। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि सरकार की योजनाओं से गरीबों और महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है। सीधी जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती हमारी पहचान रही है और जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए इसे फिर से अपनाना होगा। प्रदेश में संस्कृति विभाग के द्वारा 21 जून को विश्व योग एवं संगीत दिवस पर कला और संस्कृति का अनूठा उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 14 स्थानों पर संगीत, नृत्य, चित्र और शिल्पकला से जुड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान रखी गई है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री के आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन कल भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जाएगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्रोफेसर और राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर डॉक्टर पीएन सनेसर को नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मानित किया। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर खरगोन और गुना में सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुना के कृषि विज्ञान केंद्र आरोन में आत्मा योजना के तहत प्राकृतिक कृषि आधारित कृषक संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पुनर्गठन की तैयारी के सिलसिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2 सदस्यीय दल दिल्ली से शहडोल पहुंचा। भोपाल में एक पेड़ अपने बुजुर्गों के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के हज हाउस परिसर में वृक्षारोपण किया गया। जनजाति संग्रहालय में उत्तर प्रदेश की कोहबर चित्र परंपरा का अंकन शिविर 22 से 24 जून तक प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है। शिवपुरी में महिला हॉकी प्रशिक्षण के 10 दिवसीय आयोजन में शिवपुरी के साथ बिहार की महिला हॉकी टीम भी हिस्सा ले रही है। राजगढ़ जिले के माचलपुर सेक्टर द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अशोकनगर में आयोजित 12 दिवसीय पर्यटन मित्र प्रशिक्षण

कार्यक्रम का आज समापन हुआ और मौसम में प्रदेश में 15 से 16 जून तक दस्तक देने वाला मानसून इस बार करीब 10 दिन की देरी से 25 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। जून माह में अब तक प्रदेश में सामान्य से 39% कम बारिश हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। प्रधानमंत्री कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, प्रदेश की उपलब्धियों की सराहना। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में सड़क सीवर निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन, 6-लेन फ्लाई ओवर की भी घोषणा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे है नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

संदेशों को सुनने के बाद अब आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम सभा के लिए।

0: सर्वे बारे ई अभियान में जागरूक रेरिया युवा अभियान नुक्कड़ नाटक निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित करो जा रहा है और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न है।
1: बुंदेली समाचार।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
3: सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और भैयानों अब हम शुरू करते हैं आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। एक क्रम में जो है पहला गीत हम आपहरों को सुनवा रहे हैं फिल्म उम्मीद से। स्वर है मोहम्मद रफी का, गीतकार है शकील बदायूं और संगीतकार है रवि। जयगीत की फरमाइश हम तक पहुंचाइए इरशाद अनवर, सबा परवीन, युसरा अनवर, शरीम, शारिक, सना, सबीना, मुमताज, अर्शिया, मारिया और यूसुफ ने। इके संगे जय गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाइए घंटाघर चौक खंडवा से। चिट्ठी आई है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। आप सभी की पसंद पे अपन सब मिलकर सुनाते हैं जो गीत।

आपके प्रति आपके फिल्मी गीत को अगलो गीत हमने लव है फिल्म पिया मिलन से। जगीत में स्वरदाव है हेमलता और रत्नेश ने, गीतकार रविंद्र जैन, संगीतकार भी रविंद्र जैन है और जगीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। जय गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, कर्णव वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा ने। और जय गीत की फरमाइश जय चिठिया जय गीत के लाने पहुंचाई है, फरमाइश करता है गौरी नगर इंदौर के आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले। तो इन सब की फरमाइश पे अपन सुना थे जो गीत।

0: तो भैया आपने जो गीत सुनो फिल्म पिया मिलन से है, तो अगला गीत अब हम आप रोकलाने सुनवा रहे हैं फिल्म निकाह से। स्वर है महेंद्र कपूर को, गीतकार हसन कमाल और संगीतकार रवि। जागीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है भोपाल से इरशाद अनबर, सबा परवीन, युसरा अनबर, शरीम, शारिक, सना, मुस्तकिम, सबीना और इनके साथियों ने। पटेल नगर मलोड पंजाब से फरमाइश पहुंचाई है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरीना। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर अपन सुनाते हैं जो गीत।
1: अभी अलविदा मत

और भैया रूं, अब जो है आपकी पाती आपके फिल्मी गीत क्रम में अगला गीत हम आप को सुना रहे हैं। उनकी फिल्म को नाव है बनफूल। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। जय गीत की फरमाइश के लाने चिट्ठिया डारी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर ने। भाटापारा दतरंगी से चिट्ठिया लिखी द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा ने। जय गीत की फरमाइश के लाने एक और चिट्ठिया हमारे पास है। सपना संगीता रोड इंदौर से चिट्ठिया डारी है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो इन सब श्रोताओं की पसंद पे अपन सब मिलकर सुनते हैं जो गीत।

तो भैया आपने अभी जो बनफूल फिल्म को गीत सुना दो, और अब जो है अगलो गीत आपकी पाती आपके फिल्म गीत क्रम में हम सुनवावे जा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, स्वर है आशा भोसले का, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। जयगीत केला ने फरमाइश भेजी है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, कर्णव वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। जय गीत की फरमाइश के लाने हमें चिट्ठियां भेजी है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटे से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पे अपन सभी मिलकर सुनाते हैं फिल्म तीसरी कसम को जो गीत।

तो भैया रो फिल्म तीसरी कसम को जय गीत के संगे आपकी पाती आपके फिल्मी गीत क्रम जय संपन्न हो थे और अब जो है ग्राम सभा भी संपन्न करवे के विधिया हो रही है। मैंने चलत चलत हम आप घरों को बता दे तो जरूर कहना चाहें कि अगर हमारे किसान भाई NHBM यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि महाविद्यालय है या फिर जो कृषि विस्तार अधिकारी है ग्राम सेवक है उनसे जो है NHBM के बारे में चर्चा जरूर करें। कैसे कि जो ऐसी महत्वाकांक्षी मिशन है योजना है एक उद्देश्य वैज्ञानिक तौर पे मधुमक्खी पालन किसान भाइयों को करवाना है और शहद उत्पादन करवे में जो है एक तरह से मीठी क्रांति लाना है जो जो है केंद्र सरकार की मंशा है। तो हमारे किसान भाई जो है ये मिशन से जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। और अब चलवे के भैया सगरी किसान भैया बिन उनको महेश भैया की राम राम।

0: ग्रामीण भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
1: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खास तौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
3: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है जो सदियों पुराना है उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं और इसके पीछे कारण है। उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं उस यात्रा को हम जारी रख पाए और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इजराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं लेकिन हमारी विदेशी नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
2: बिल्कुल। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही है?
3: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लेटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वही एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
2: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल है उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथेलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
4: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माहौल का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओवाद को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओवाद का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओवाद तकरीबन खत्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे इंसर्जेंट्स थे उन्होंने खुद सरेंडर किया जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट्स थे और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट्स थे सबने सरेंडर किया है और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया है उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है सड़कें बन रही हैं हर जगह कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं
2: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है
4: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफी गिरावट आई है करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं 15,00,000 जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं
2: बिल्कुल अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का मैम आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है
3: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए हम इस पर तो बात करते हैं पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए उदाहरण बताती हूं कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट

0: हमारे पास हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया, कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीए को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीए हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक

0: हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: हम रुख करते हैं एमपी नथारिया साहब का, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवादी टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढील पना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही है। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से, पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है अभी, अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
2: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उनके जितने भी अटैक करने की कोशिश किए गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
0: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमी कंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें तो यूएनएससी जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है। इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत मदन मोहन का है। मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए चिराग फिल्म का गीत।
5: तेरी आँखों से मुश्किल से

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अनु मलिक का संगीत है, जावेद अख्तर के बोल, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म रिफ्यूजी के लिए।

सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में अभी अपनी फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत सुना। जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार आकाशवाणी। नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची, वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के आठों राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: This is the country.
10: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना। और ये फिल्म भी

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव।
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।

दोस्तों तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

रात्रि के 10 बजे हैं, अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का। ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ 14 करोड़ जितनी बहुत बड़ा नंबर है ना पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है ये डिसेंट्रलाइजेशन का विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है ये विलेज ड्रिवन विमेन ड्रिवन मूवमेंट है
0: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ 14 करोड़ जितनी बहुत बड़ा नंबर है ना पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है ये डिसेंट्रलाइजेशन का विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है ये विलेज ड्रिवन विमेन ड्रिवन मूवमेंट है
0: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हूज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a